0: वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: राइट
1: मैं दुनिया

0: मन में कच्छी वरुण कशी दिसते।
1: नमस्कार, मी डॉक्टर चंद्रशेखर जंगम बोलत आहे। तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज सुनता।
1: तुम्ही ऐकत आहात सांज रंग आरजे अनुसोबत।

स्नेहालय संचलित स्नेहांकुर दत्तक विदान केंद्र, अनवरस, अनाथ, कुमारी माता, बलात्कारित महिला व मुलांचे कौटुंबिक पुनर्वसन स्नेहांकुर दत्तक विधान केंद्रामार्फत केले जाते. स्नेहांकुर दत्तक

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: राइट,
1: मैं दुनिया

कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।